इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

Thank you.

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: development in the drug crisis that has been plaguing for the last few years.
1: जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। Let's do it together. Let us prove it together that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: हम है टीम रेडियो चिनार 90.4 FM and we care for you. RJ Zeus.

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

सूचना 90.4 एफएम मस्तार शो व्हाट्सएप, मैं हूं आपका साथी जागसियो। दोस्तों हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काए, अपनी बात हम तक पहुंचाए, फॉलो शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाए, रेडियो चुनार के ऑफिशियल हैंडल्स को फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप, ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार से धड़काते रहे।

0: Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update. Weather update.
3: तो रेडियो चैनल 90.4 एफएम हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन और ब्रदर आज का वेदर
2: रेडियो चैनल
3: क्या वेदर ड्रामा वाली बोसो मामा जी हाँ रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आज का वेदर अपडेट क्या कहता है आज का वेदर कैसा होने वाला है जी हाँ आपने जैसा सोचा वैसा होने वाला है
2: रेडियो चैनल वेदर अपडेट
3: आज होगा पूरा दिन सनी आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस
2: रेडियो चेन्नई वेदर अपडेट
3: आज का दिन पूरा सनी और हॉट होने वाला है सो लाजमी है कि अगर आपको काम नहीं है तो समझिए शवाना लाजमी है और जब भी पीक टाइम होता है दोपहर के आसपास जब हीट की इंटेंसिटी हाई रहती है तो उस टाइम अगर जरूरी नहीं है तो बाहर जाना अवॉइड ही करें साथ ही साथ अपने टेम्परेचर शिफ्ट्स का भी ख्याल रखना है अगर एसी वगैरह में बैठे हैं फैन के पास बैठे हैं ज़्यादा गर्मी लग रही है और उसके बाद एसी से निकलकर सीधा गर्मी में जाते हैं तो इंसानी जिस्म को लग सकता है धक्का और ये धक्का दचका बनकर इंसान पर भारी पड़ सकता है
2: वेदर अपडेट।
3: तो जनाब थोड़ा सा ख्याल रखें नया बराग्रह का सुन थोड़ा करो पान गुड बॉडी वार्म अप When exercise, वाइट पर लॉग इन कर जस्ट थोड़ा सा रुक कर बाहर जाए एसी से हटकर थोड़ा ऐसे रूम पे बैठे जहां पर टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो सके यूवी इंडेक्स अभी के लिए मॉडरेट पर ह्यूमिडिटी 60% विंड स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर विजिबिलिटी 14 किलोमीटर आज का सनराइज हुआ 5:21 पर आज का सनसेट होगा 7:47 पर हाय हाय मैं सदके याद रखिए 8899904904 इज द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है 8899904904 तो यह है क्यों कॉल करे तो व्हाट्सएप या है क्यों करे टेक्स्ट मैसेज तो पन कथा इस बात नहीं डीएम भी कर सकते हैं आप जॉक ज्यूस के नाम से मिलूंगा या आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो और दिल की धड़कन रेडियो चुनार मैं हूँ जॉक ज्यूस यह मजेदार शो व्हाट्सएप मेरी जान से डायरेक्ट

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
3: रेडियो पर वायरल ऑन व्हाट्सएप जी हाँ, क्या ज्ञानी लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप में आइए बात करते हैं उन बहनों की जिनके भाई उन्हें सताते हैं, उन्हें रुलाते हैं और उनको सताए बिना उनका जी नहीं भरता। अस ब्रो अस, बहन भाई का प्यार इतना कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं कहता, कहती है रिसर्च। अब जो बहनें अपने भाइयों से प्यार करते हैं, भाइयों की तो ज़िंदगी निखर जाती है, सवर जाती है। मतलब बहन जो बलाएं लेती हैं और नज़र उतारती है, भाई चमकते हैं। मतलब मुझे ही देख लो, अपनी बहन जो है ना एकदम बच्चे की तरह प्यार करती है। और वही अगर हम बहनों की बात करें तो उस रिसर्च हमें ये बताती है कि बहनों में 78% स्ट्रेस ज़्यादा पाया जा सकता है, क्योंकि भाई जो है ना बड़े ही बड़ी डीड होते हैं, बहनों को सताते हैं, रुलाते हैं और उसी वजह से बहनों में जो है स्ट्रेस लेवल्स हाई पाई जाती है। जी हाँ, यही है रिसर्च का कहना। अब अगर बहन बहन के साथ रहती है तो प्यार बनता है, और अगर बहन भाई के साथ रहती है तो भाई उल्टा स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है। लेकिन ये रिश्ता जो है स्ट्रेस भरा हो या कुछ भी हो, प्यार से बना होता है। जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता तब बहन ही होती है, क्यों कौन है मेन बॉयस नाम है। सो ये जो भाई बहन का रिश्ता होता है ना, कशिर पुछा तो ना इश नाम तो माज, ये रिश्ता टूटे से भी नहीं टूटता। चाहे कुछ भी हो, कोई खड़ा ना हो, कोई ना आए, आप फेलियर हो, लूजर बुलाए सब,

बहन है जो आपकी आंखों में वो चमक वो हीरो देखती है। जी हाँ, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में हम सब की बहना है। रेडियो चुनाव 90.4 FM, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू एवरी लवली सिस्टर आउट देयर। मैं हूँ जॉक्सियस और सभी बहनों सुनते रहो दिल गाते।

0: मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, स्कार्स आर जस्ट अ ट्रेजर मैप फॉर पेन यू हैव ब्रीड टू डीप टू रिमेंबर।

और इस फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं मजेदार शो वॉसअप, मैं हूं आपका साथ ये आरजेज़। जी हाँ, जॉक्सिस के साथ मजेदार शो वॉसअप ओनली ऑन रेडियो चनार। सही है मेरे यार, वक्त हो चला है कि आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन टॉपिक बताने से पहले बता दूं आपके समोरे साथ जुड़े हैं शमशाद। शमशाद लिखते हैं, सर फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूं, आई लव योर वॉइस एंड आई लव रेडियो चनार, वी लव यू टू ब्रदर एंड आई लव यू टू एंड थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। आरिफ बड़ी टाइम के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ इनकी बेटी नूर और जुमाना है। लिखते हैं, आरिफ दैट ब्रो आई मिस्ड यू अ लॉट, आई वाज गॉन आउट ऑफ द स्टेशन फॉर सम टाइम बट रेडियो चुनार सुन रहा था, मेरे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं थी, थोड़ा सा दूर चला गया था, इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा था, उस वजह से कनेक्ट नहीं कर पाया। होप यू मिस मी, वी मिस्ड यू, तभी तो हमें याद है कि आपने मैसेज कब की थी और कब नहीं। सो वेलकम होम हबीबी। रेडियो चैनल की हॉट फ्रीक्वेंसी पर आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाए, 999-0404 ये मैजिकल बटन अपने फोन में दबाए। वल बाया, क्या इसकी तुम्हें दवा रहे मराना चल। व्हाट्सएप शो में आज का टॉपिक डाउनटाउन श्रीनगर। आज हम बात करेंगे शहरी खास में क्या है खास, जो शहरी खास को खास बनाता है, खास हम खास बात है आपके साथ करने वाले हैं हम। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाएं, क्या आप डाउनटाउन घूमे हैं, क्या आपने डाउनटाउन श्रीनगर को विजिट किया है, क्या लगा आपको खास है वहां पर, क्योंकि शहरी खास को खास कुछ तो खास बनाता है। और डाउनटाउन का ये डायलॉग कैस गए बदल बदल बदल, रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर स्टूडियो हुक्ड जॉक्सिस के साथ मजेदार शो वॉट्सएप स्टूडियो हुक्ड, हुक्ड हुक्ड हुक्ड हुक्ड हुक्ड दरगाह दे रहा।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: only on Radio Chennai 90.4.
1: I feel good.
0: A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.
2: मैं हूँ RJ Zeus. जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
3: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हाय हाय मूड तो हिल गया है अब इस वाइब के साथ ही हम लेकर आए पूरी वाइब एंड ट्राइब बिकॉज़ इट्स शो टनर बीट्स बीट्स ऑन रिपीट ये सारी बातें और क्या कुछ होगा और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो टनर 90.4 एफएम पर

Jeremy. बेस ऑन रिपीट शो चुनार बेस आप एंजॉय कर रहे हो नहीं ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम दे सारी बातें हो रही है मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है. फलाय तो सुपर एक्साइटेड शुरुआत हुई है और वाइब है ड्राइव है आप है मेरा तो आप हो आपका होना ही काफ़ी है और आपके होने से ऐसा लगता है ना कि अब कुछ बचा ही नहीं है. सो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आपके ओपिनियंस आपके थॉट्स और आपका साथ बिकॉज आई फील वो कहते हैं ना कि अधूरापन होता है और इस अधूरेपन को आप ही तो पूरा करते हैं. अब देखिए ये इतना शायरी वाला जो अंदाज़ है ना कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है. अब जो पसंद आता है आपको वो भी तो बताइए. 8899-04904 पर कॉल कीजिए टेक्स व्हाट्सएप कीजिए बताइए मुझे आपके हालात जज्बात और ख्यालात

ये दुनिया को कैसे बोल सकते हैं, आए हाय दुनिया है, बिकॉज हम तो हर जगह है, पूरी दुनिया में आप हमें सुन सकते हैं। और डरने की क्या बात है, ये तो बैक टू बैक सॉन्ग्स की शुरुआत है।

मजा ले रहे, इस पल का मजा लीजिए, क्योंकि ये पल कब आएगा वो तो आपको ही पता है, कल बराबर 12 बजे। फिलहाल के लिए इस पल को एंजॉय कीजिए, बैक टू बैक सॉन्ग्स एंजॉय कीजिए, 8999904904 पर कॉल कीजिए और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर 90.4 FM का मजा लीजिए।

शो रेडियो चुनाव 90.4 FM गेम ऑन विद आरजे असरा ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM 4 FM

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

93.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नेशनल हाईवे जम्मू एंड कश्मीर पर बहुत साइड से ट्रैफिक अलो किया जा रहा है, बट स्लो मूवमेंट ट्रैफिक जो ऑब्जर्व किया गया ड्यू टू सिंगल लेन कंडीशन कई जगहों पे. स्पेशली अगर हम बात करें तो शूटिंग स्टोन्स लैंडस्लाइड्स की वजह से कई जगहों पे काम रुक जाता है, तो स्लो मूवमेंट हम देखने को मिलता है. और ओवरऑल अगर हम कहें तो अभी के लिए बहुत

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

में तो बसा है और एक नशा भी छा रहा है, वो है शो हंगामा का। हम दूर नहीं हो सकते, और जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि बराबर 2 बजे आऊंगी मैं, शो हंगामा, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, क्या बजेंगे, और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो कहीं और नहीं मिलता। और देखिए घड़ी भी ऐसा इशारा कर रही है कि अभी तो करना ही है ये कि शो हंगामा, ड्रामा, और साथ में आते आते ही प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्रेजी। जरूरत नहीं है अपने थॉट्स को बचा के रखिए, विचारों को बचा के रखिए, क्योंकि विचारों से बढ़ता है प्यार, तभी तो हम है सही मेरे यार वाला रेडियो सुनार। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। बहुत सी बातें होंगी, मैं बस यूं कही और यूं वापस आए।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: बजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।
3: हंगामा ड्रामा पे फ्रेश फ्रेश क्या चल रहा है? और चल रहा वो है जो लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, रीपोस्ट और लिप सिंकिंग डांस रील्स और मीम्स और रील्स बन रही हैं। और आज ही कैसा गाना है, मानिए मेरी बात कि ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी से है, ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज है, क्योंकि उसके बाद पार्ट टू भी आया था और अब तो पार्ट थ्री भी आ चुका है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं वो मूवी भी और जो इसकी फ्रेंचाइज के बाकी मूवीज भी हैं। बट बात यह है कि ये ऐसा गाना है जिसमें तीन तीन स्टार्स देखे गए थे, उदय भाई, मजनू भाई और मलाइका।

और देखिए वेलकम मूवी से ये ट्रैक है और अभी तो वेलकम टू द जंगल भी आ चुकी है, पर ये जो क्रेज है इस मूवी का और इसके एल्बम का वो अभी भी, वो कहते हैं ना, अभी भी छाया हुआ है, चाहे गाना ऊंचा लंबा कद वाला हो या किया किया वाला हो। देखिए इनके साथ हमने क्या किया वो तो आमी जानी ना, आई डोंट नो, बट हम चाहते हैं कि आप हमें फोन करें। 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, और बताइए आपकी फेवरेट मूवी अक्षय कुमार की कौन सी है। मैं मस्त रहा, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: जी वेलकम बैक है और इस फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम, ये है हर दिल की धड़कन। जी अभी इट्स द टाइम फॉर डिस्को नहीं बल्कि रेलवे अपडेट, और आज की अपडेट यही है कि जो भी ट्रेन सुबह के टाइम पे डिले हुई थी कुछ दिनों से सुबह के टाइम पे, एंड इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे एंड टुडे ऑल्सो, सुबह की कुछ ट्रेन डिले हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिचेस, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। तो जो रेलवे कर्मचारी हैं वो आपकी सिक्योरिटी के लिए ये डिलेज हो रहे हैं ताकि ट्रेन को सही से जांच पड़ताल करके वो कम्यूट कर पाए। और रही बात कि जो भी ट्रेन का शेड्यूल है दैट इज़ एज पर समर टाइम टेबल, एंड यू कैन गेट द समर टाइम टेबल इधर कहीं भी फिजिकली अगर आप प्रेजेंट है किसी भी स्टेशन पे तो वहाँ पे आपको बिलबोर्ड दिख जाएंगे, या अगर आपको ऑन द स्टेप ऑन द गो चाहिए तो दैट इज़ रेल वन ऑफिशियल ऐप, इंडियन रेलवे ऐप, जहाँ पे सिर्फ आपको कश्मीर रेलवे लिंक नहीं बल्कि पूरे इंडियन रेलवे की खबर रह सकती है। और ज़रूरी है कि आप अपने जो रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे, बिकॉज डेफिनेटली देयर इज समवेयर आउट देयर एनी ट्रेन वेटिंग फॉर यू, जस्ट माय।

बताएं, और इन्फॉर्मेशन का तड़का भी यहीं मिलता है। तो रेलवे अपडेट्स के अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो यहाँ मिलती हैं। वन मिनट फैक्ट क्या टॉपिक है एंड स्पेशल गेम ऑन। आपकी और मेरी हर बात जुड़ी है तो जरूरी है कि और इस प्यार को बढ़ाएं। 8899904904 इज द नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर बन सकते हैं स्टेटस फ्रीक्वेंसी का हिस्सा। मैं वास्तव सुंदर रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
0: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
3: चुनार बीट्स विद आरजे दीवा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।

0: आरजे असरा के साथ
1: Only on Radio Chunar 90.4 FM.
0: Hi, मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो चला 90.4 FM. और कुछ ही ट्रैक्स पहले मैंने कहा था कि कुछ ट्रैक्स बाद हम बात करेंगे कि क्या है आज का टॉपिक. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी स्पेशल, समथिंग दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट एट दिस मोमेंट.
2: जब से झनकार
0: और आज हम बात करने जा रहे हैं वेमेन एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में. और जब भी हम इस बारे में सोचते हैं, स्पेशली लेट अलोन एनी जेंडर, स्पेशली जब हम ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो हमें समझ आता है या हमें यूजुअली लोगों के दिमाग में ये आता है कि ज़्यादा खाना प्रॉब्लम है. पर कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा कम खाते हैं. उसकी वजह से उन्हीं उनकी बॉडी जो है वो उसी तरह से अडाप्ट होती है, उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है. एंड स्पेशली वील टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड सोशल मीडिया की दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो डिजिटल इन्फ्लुएंस क्या है हमारे जो लाइफस्टाइल पर. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया में जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि सब अपनी रियल लाइफ दिखाते हों. कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया के लिए जीते हैं और वो वही दिखाते हैं जो वो लोगों को जो लोग देखना चाहते हैं एक्चुअली. एंड मोर ओवर फिर हम उन सब चीज़ों से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं उनके बारे में बात होगी. और एक्चुअली हमें अपनी बॉडी से इतनी ज़्यादा अनरियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल ज़्यादा प्रिवेल करती है, दैट इज़ बॉडी डिस्मॉर्फिया, उसके बारे में भी बात होगी. तो जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा. आज का टॉपिक वेमेन एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स. मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। हंगामा पे आज क्या हो रहा है? आज हम बात कर रहे हैं वेमेन एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, और स्पेशली अगर हम बात करें ईटिंग डिसऑर्डर की, एंड बिसाइड द जेंडर, ईटिंग डिसऑर्डर इज अ थिंग जो एक्चुअली एक सीवियर मेंटल कंडीशन है। लोग सोचते होंगे शायद एपेटाइट नहीं है, स्टमक का, डाइजेशन का, एलिमेंट्री कैनल का, नहीं। इट्स अबाउट आवर माइंड, इट्स अबाउट आवर मेंटल हेल्थ, एंड स्पेशली हमें इट्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। सो हमारा जो दिमाग है वो ये सोचने लगता है कि कुछ पर्टिकुलर खाने से, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर खाना खाने से, कुछ लोगों को सारा का सारा खाना खाने

से इश्यूज होने लगते हैं, या नहीं खाए तो इशू होता है या खाते हैं तो इशू होता है. बट बात यह है कि बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ लिटिल इनसिक्योरिटी इन योर बॉडी, कि कैसे आपको अपनी बॉडी वेट, बॉडी शेप या किसी खाने से इशू होने लगता है, जो कि सही बात नहीं है. और स्पेशली जो बॉडी डिसमॉर्फिया का मैंने जिक्र किया था इससे पहले, दैट इज़ कि जब आप अपनी तरफ देखते हैं, अपनी बॉडी की तरफ देखते हैं, तो आपको हर बार ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये चेंज करना चाहिए. देखिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाना, टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिट रहें. बट हर बार जब भी आप खुद की तरफ देखें तो कोई एक इनसिक्योरिटी आपको दिख जाए, दैट इज व्हाट वी कॉल बॉडी डिसमॉर्फिया. एंड हमें यही सिखाता है आजकल की जो दुनिया है, उस वजह से भी हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे आसपास ऐसे ज़रूर लोग होते हैं दैट पुल यू डाउन व्हेन रिलेटेड टू योर बॉडी वेट, रिलेटेड टू योर हाइट, रिलेटेड टू योर कलर. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को एफर्म करते रहें, आप खुद को वैलिडेट करते रहें. और अगर ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करें स्पेसिफिकली, एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर्स अडल्ट्स में देखा जा रहा है, और सिर्फ अडल्ट्स नहीं, अभी बच्चों में भी ये डिसऑर्डर्स हैं, और मैं बात कर रही हूँ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की, BED. स्पेसिफिकली जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते कि हम कितना खा रहे हैं, वो कहते हैं ना कि पेट भर गया मन नहीं भर रहा, और वो चीज़ हमारी सेहत के लिए बहुत नासाज है. बिंज ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि मैसिव अमाउंट में जब हम खाना खाते हैं, चाहे हम दुखी हैं. आपने कई बार सुना होगा कि जब हमारा दिन बुरा जाता है तो हम सोचते हैं कि भाई वी शुड ट्रीट आवर सेल्व्स, वी शुड ईट समथिंग गुड. शेम से हो, गिल्ट से हो या स्ट्रेस से हो, हमें वो चीज़ लगता है कि वी हैव टू रिवॉर्ड आवर सेल्व्स. वो रिवॉर्ड करते करते हम इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबली खा लेते हैं, हमारा भाई पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता. और उसी को कंट्रोल is a very important thing because it's all about your mind. And रही बात कि जब हम खाना खा लेते हैं इतना ज़्यादा, तो फिर भी हमें guilt होता है कि भाई देखो मैंने कितना सारा खाना खा लिया और अब मेरी सेहत खराब भी हो सकती है. देखिए, information के साथ साथ entertainment का जो ये बंधन है, ये बंधन तो प्यार का बंधन. देखिए, मुझे गाना चाहिए नहीं क्योंकि उतनी सुरीली आवाज़ हमारी है नहीं, बट क्या करें, आपके प्यार से कर लेते हैं. और देखिए, इतना प्यार है तो आपके विचार भी बनते हैं. 8899904904 इज द नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर बन सकते हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा. मैं वास्तव सुनता रही रेडियो 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

हाय मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम जो है हंगामा ड्रामा और इन्फॉर्मेशन। और जैसा कि हमने बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में ऑलरेडी बात की और बहुत सारे टाइप्स हैं ईटिंग डिसऑर्डर के, स्पेशली अगर हम बात करें एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। और ये इतनी बड़ी टर्म उतनी ज़्यादा अनफेमिलियर नहीं है हमारे लिए, बल्कि अगर हम इसके बारे में बात करें सोचें तो बहुत सारे लोग आपके आसपास इसे मिल जाएंगे जो खुद को स्टार्व करते हैं, यानी कि खाना बिल्कुल ही नहीं खाते इस डर से कि उनका जो वेट है वो गेन हो जाएगा। और फिर से वही बात कि बॉडी डिसमॉर्फिया की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स यूजुअली होते हैं। और जब हम एनोरेक्सिया की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली एंड वेमेन की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है कि कैसे एक बहुत सारी लड़कियां पहले तो जिम नहीं जाती हैं या अपना ख्याल नहीं रखती हैं।

बट एक मोमेंट पे जब वो गेन वेट गेन करने लगती हैं और फिर दे वर्क देयर लाइक दे वर्क हार्ड कि वो फिर से नॉर्मल फिट हो, नॉर्मल फिगर में आए. बट ये ज़रूरी है जानना कि कब हमें रुकना है. फिर एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज भी नहीं करनी, और ज़रूरी है कि हम सही खाना खाएं. एनोरेक्सिया जो है बहुत ही अभी प्रिवेलिंग सिचुएशन है एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है तो ज़रूर है कि ज़रूरी है कि आप उन्हें एक चुनावना सुहस दून कि भाई यू हैव टू ईट प्रॉपरली, टेक केयर ऑफ देम, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस, एंड उन्हें एक हिसाब से अपनी बॉडी के प्रति एक प्यार जेनरेट होना ज़रूरी है. क्योंकि जब तक यू डू नॉट लव योर सेल्फ हु यू आर राइट नाउ तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं. इसके अलावा एक और टाइप होता है ईटिंग डिसऑर्डर का जिसे हम बिलियोमिया नर्वोसा कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है अभी के टाइम पे, स्पेशली इन वेमेन. इट इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ कि आप बहुत सारा खाना खा लेते हैं आउट ऑफ बिंज ईटिंग जिसके बारे में हमने बात की, बट उसके बाद एक डिफरेंट चीज़ करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. और बिलियोमिया का यही फैक्टर बिंज ईटिंग से डिफरेंट है कि जब आप बहुत ज़्यादा अनयूजुअल अमाउंट ऑफ खाना खा लेते हैं उसके बाद आप फोर्स्ड वोमिट करते हैं. और कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि ये भाई ऐसा कोई क्यों करेगा, बट इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसा भी होता है. जब कोई अपनी बॉडी से प्रति इनसिक्योर महसूस करता है तब वो इंसान या हम में से कोई ऐसा इंसान होता है जो खाना खाए बट उसके बाद चोरी छुपे ही सही या सबके सामने वोमिट कर देता है, एक्सेसिव खाना बाहर निकाल देता है बॉडी से ताकि उनका जो वेट गेन ना हो, या एक्सेसिव फास्टिंग करना या लैक्सेटिव्स लेना जिससे जो भी खाना है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब थोड़े बहुत करे और बस बॉडी से निकल जाए, या तो खाना खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करना ताकि आपका जो बॉडी है वो वेट गेन ना करे. और ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है. बहुत सारे लोग ऐसे नॉर्मली अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो एक्चुअली ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, और ये सब चीज़ें एक इनसिक्योरिटी से पनपता है. तो ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें और अपने आप को किसी से कम ना समझें, और जो आपकी बॉडी है वो अल्लाह साहब ने एक पर्टिकुलर तरीके से हर किसी को एक स्पेशल, हर किसी के पास स्पेशल फीचर्स होते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल रखें और खुद से प्यार करें. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
0: चुनार बीट्स विद हर्षे दीवा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज जे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: Hi, मैं हूँ RJ साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darce Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

गिना जाता था भले लोगों में, सुना जाऊं ऐसी जुबान था, आपसे क्या कहूं, दिल टूटने से पहले मैं भी इंसान था।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

थकेंगे आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर

0: एक्टर्स की जिंदगी खतरे में है क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।
0: रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

0: समझे,
1: अज समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के

0: सबकी यारी मेरा दिल जलाना।
1: रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

आँखों में। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

0: चले गए।
1: रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

0: दुखी मन
1: रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: रात

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ,

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प प म रे

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ

0: चाहूं भी शोर बचाओ ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना तारा रा रा रा। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। हे याने याने याने प्यार हो गया।

हमके वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

ने खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया बाजू।

0: बंदी मुट्ठी लाख की
1: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
0: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।